Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए, व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं. आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं. व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है. इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें. निर्णय लेने की क्षमता. एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए. सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है. यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है. निर्णय लेने की

0: यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवा में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ചിത്രപാഠ്യഗാനം ചിത്രം സാഗരം സാക്ഷി, രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, സംഗീതം ശരത്.

आपकी कसम, इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज साहिल उद्यानवी के बोल।

संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, नगमनिगार शकील बदायूं ने मौसिकार नौशाद। चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे हैं। तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आनंद बख्शी की रचना है, फिल्म है महबूब की मेहंदी, और यही है श्रोताओं आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और मैटिनी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शायर आलोक यादव जी, जो भारतीय भविष्य निधि संगठन से भी जुड़े हुए हैं और एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस विविध भारती के स्टूडियो में आपके पास हूं।
1: जी आलोक जी, मुझे लगता है

0: एक शायर का सबसे बड़ा परिचय उसकी शायरी होती है, तो सबसे पहले आपके दो चार शेर सुनते हैं फिर बातें करते हैं।
1: बिल्कुल
0: इरशाद।
1: एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं अपने, कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा।
0: वाह, नई नस्लों के हाथों में भी
1: ताबिंदा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा।
0: वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
1: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में,
0: दश्ते जुनू में,
1: किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा।
0: वाह वाह वाह, कोसारों पर पाइंदा रहेगा, क्या बात है, शानदार है।
1: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब,
0: अच्छा
1: गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है
1: जी। एक दो शेर और एक गजल के, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे।
0: वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे।
0: वाह वाह वाह, बड़ी बात है।
1: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
0: वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में
0: जी,
1: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
0: वाह वाह वाह,
1: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी
0: जी,
1: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे।
0: वाह आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे, क्या बात है।
1: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
0: तो दर्द क्या,
1: दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया
0: जी,
1: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, इतने प्यारे शेर आपने कहे और गजलों की दुनिया जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय दुनिया है, पर ये रास्ता आसान नहीं है, तो गजलों के रास्ते पर आपने कब चलना शुरू किया था?
1: जी दरअसल मैं कविता लिखने लगा था जब स्कूल में था मैं
0: जी,
1: उसके बाद जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने कविता के साथ कहानी भी लिखी कुछ जो उस दौर के सबसे लोकप्रिय अखबारों में छपी और आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई। शायरी की तरफ और गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, लेकिन कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। इतना मुझे पता था कि गजल का एक उरूस होता है और उस उरूस को समझना बहुत जरूरी है गजल कहने से पहले। 1993 एक ऐसा साल था जहां मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने कविता लिखना और कहानी लिखना, मतलब लेखन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी और उसी में पूरी तरह से डूब के रह गया मैं।
0: इससे पहले आप क्या कर रहे थे?
1: इससे पहले मैं बीएससी और एमबीए किया मैंने।
0: तो ये जो बीएससी है ये तो विज्ञान की पढ़ाई हुई
1: जी,
0: फिर अचानक एमबीए की तरफ घूम गए आप?
1: एमबीए चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था और उस दौर में बहुत कम लोग एमबीए करते थे, मुझे इसके बारे में पता लगा और मेरा रुझान था, मैंने एमबीए किया उस समय।
0: तो उसके बाद पेशेवर दुनिया की ओर नहीं गए?
1: बिल्कुल गया मैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, लेकिन शुरू से लगन ये थी कि सिविल सर्विसेज करना है, तो हमेशा से था कि तैयारी करनी है।
0: तो ब्रेक लिया?
1: ब्रेक लिया मैंने जॉब से और ब्रेक लेके फिर मैंने तैयारी शुरू करी।
0: कितने बरस तैयारी की?
1: बहुत साल तैयारी की मैंने 93 से लेके 98 बैच में मैं इसमें आया।
0: ओहो जी, तो कुछ नाकाम अटेम्प्ट थे या क्या?
1: बिल्कुल नाकाम अटेम्प्ट थे, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट रहे
0: जी जी।
1: बीएससी आसानी से घुसने नहीं देता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कठिन राह है
1: जी,
0: है ना, वो आग का दरिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस दौरान जब आप यूपीएससी की पढ़ाई में मुब्तिला थे, क्या कलम मचलती नहीं थी लिखने के लिए?
1: हाँ बहुत, बेशक ऐसा होता था, कई दौर ऐसे आए, कई समय ऐसे आए कि लगा कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले इस मकसद को हासिल कर लिया जाए, ये पूरा कर लिया जाए, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी समय लग गया।
0: अच्छा।
1: और मैंने दोबारा जो लिखना शुरू किया है वो 2012-13 में फिर से लिखना शुरू किया।
0: आपने बताया कि ये जो नाकाम अटेम्प्ट्स थे और एक जदोजहद का सिलसिला समझ में आता है
1: जी,
0: बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें सुन रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी

0: करें क्योंकि हाँ पूरा सिनेरियो होता है, एक हॉस्टल या एक किराए का कमरा, एक ट्रांजिस्टर,
1: बिल्कुल
0: एक टेबल,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये सिलसिला जिससे आप भी बाकायदा वाकिफ होंगे, वहां रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साथी होता है,
1: बहुत बड़ा।
0: और आप एक कामयाब यूपीएससीएन हैं
1: जी,
0: तो क्या सलाह, एक एक जो ज्ञान का तत्व निचोड़ क्या देंगे आप अपने अनुभव का, ताकि उनको थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी रोशनी मिले।
1: देखिए, किसी भी खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है, ये लड़ाई लंबी है।
0: आशा और निराशा के बीच जिस तरह का तनाव का सिलसिला है, उससे कैसे निपटें ये बच्चे?
1: उससे निपटने के लिए आपको कोई अच्छा शौक रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे पढ़ने का हो। मैंने लिखना जरूर छोड़ा, बट पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने। और यूपीएससी में भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो हिंदी लिटरेचर था।
0: ओके
1: जी,
0: तो ये बड़ा कठिन,
1: हिंदी लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था।
0: हाँ, तो ये कठिन सिलसिला चुना था आपने।
1: जी,
0: है ना, क्योंकि अमूमन लोग जो है
1: पॉपुलर था मेरे लिए।
0: जी, यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाने वाला दिन और उसकी कैफियत बताएं।
1: एक बहुत खूबसूरत दिन था वो, और ये लगा कि जो सपना था वो मैंने, मेरा साकार हुआ, तो खुशी बहुत थी, आंखों में आंसू थे।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस निकाल के फिर इंटरव्यू, कई लोग तो मेंस पे अटक जाते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं, छन जाते हैं, तो ये बड़ा ही चांद को छू लेने जैसा।
1: और इस दौरान मैं फिर एक बार कहूंगा कि आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैंने युववाणी ज्वाइन किया। जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान भी आकाशवाणी को मैं जरूर सुनता था, रेडियो को जरूर सुनता था, मेरा एक छोटा ट्रांजिस्टर था और उस ट्रांजिस्टर पे गाने जब बजते थे तो मन बिल्कुल खुश हो जाता था।
0: बिल्कुल, वो एक
1: तरोताजगी मिल जाती थी।
0: जी, एक नई जिंदगी होती है जिम्मेदारियों के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी की।
1: जी,
0: मैं समझ पाया जब आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगा वापस लिखना शुरू करने में, तो वो जो शुरुआती साल थे वो कितने उबड़ खाबड़ थे?
1: आप दूसरे दौर की बात कर रहे हैं?
0: बिल्कुल
1: जी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायरी की तरफ मेरा रुझान था और एक जबरदस्त आकर्षण था गजल के प्रति, तो मैंने फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुझे इस फन को सिखा दे। और उस समय मेरी मुलाकात हुई अकील नुमानी साहब से, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे सिखाना कबूल किया।
0: और ये तो गजलों की बहुत पुरानी उर्दू शायरी की परंपरा है कि आपके एक
1: उस्ताद
0: हो जिनसे आप मश्क करें कि भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: सिलसिला
1: जी। तो उन्होंने मुझे इसका अरूज सिखाया और फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाया। इसके साथ साथ एक वहां बरेली में सरदार जिया साहब थे, उन्होंने भी मेरी तरबियत की और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सिखाया। और उनके रहते हुए ही मेरा पहला जो संग्रह था उसी के नाम 2016 में आया।
0: जी जी, कितनी सुंदर बात होती है अपनी किताब अपने हाथों में आना।
1: जी बेशक,
0: तो वो दिन कैसा था जब किताब पब्लिश होके उसकी प्रतियां आपके पास आ गई?
1: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मैं चाहता नहीं था कि मैं किताब अभी लाऊं। मेरे अंदर यह था कि पहले अच्छी गजलें और कहूं और जब एक जखीरा तैयार हो जाए तब इत्मीनान से सोच के लाऊं कि उसमें अच्छी गजल जाएं। लेकिन हमारे उस्ताद का भी कहना था और हमारे जो दूसरे उस्ताद थे सरदार जैसा, वो काफी चाहते थे कि पहली किताब आ जाए। तो हम इस किताब को लेके आए और जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ।
0: वाह, बढ़िया।
1: मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी शायर या किसी लेखक की पुस्तक का प्रकाशन जो है उसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसको एक नया रूप मिलता है, समाज के सामने उसका एक नया रूप आता है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। तब तक क्या आपने मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था?
1: नहीं, छोटी नशस्तों में पढ़ना शुरू किया था मैंने।
0: जी, ये जो सिलसिला होता है महफिलों में पढ़ने का,
1: जी,
0: इसके लिए एक अलग तरह का हुनर और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए।
1: बेशक,
0: तो उस रास्ते पर जब आप चल पड़े तो उसके तजुर्बात हमारे साथ शेयर करिए।
1: शुरुआत दौर में बहुत मुश्किल होती है कि आप मंच पे खड़े होके माइक पर जब पढ़ते हैं तो खासतौर से गजल पढ़ते हुए लगता है कि कहीं कोई लफ्जिश ना हो जाए और कहीं जरा सा चूके और लोगों ने आपको खारिज करना शुरू कर दिया। तो उस सबसे बचने के लिए एक तनाव दिमाग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ओवरकम किया मैंने और फिर प्रस्तुतियों में भी अपने कुछ निखार आया, थोड़ा बेहतर हुआ जैसा लोग बताते हैं। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूं और अभी बहुत सारा रास्ता मुझे तय करना है।

0: अब मुझे ये बताएं कि जब आप अब पढ़ते हैं और आपके चारों तरफ कुछ जाने माने शायर मौजूद होते हैं जो बरसों बरस से पढ़ रहे हैं और शायरे में मौजूद हैं जिनको आप पहले सुना करते थे
1: जी,
0: तब दिल में क्या चल रहा होता है?
1: हाँ, तब भी दिल में ये चलता है कि कुछ मैं गलत ना बोल जाऊं, कुछ गलत कह ना जाऊं, और ये भी इच्छा रहती है कि वो मेरे शेर को गौर से सुने और अगर अच्छे हों तो उस पर दाद दें।
0: इस तरह के अनुभव होंगे वो हमारे साथ बांटिए।
1: कई बार ऐसा हुआ, जैसे फरत एहसास साहब हैं, उन्होंने मेरे एक शेर की तारीफ की जो मेरा दूसरा संग्रह है कलम जिंदा रहेगा, उस पर उन्होंने लिखा भी था, और मुशायरे में भी उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा एक शेर था जिसको उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बिल्कुल सही इसमें इस्तेमाल हुआ। वो शेर था कि मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब,
0: ओहो
1: मेरी नजर पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा।
0: वाह, अच्छा है, अच्छा है। तो इस शेर की फरत एहसास साहब ने तारीफ की और बजाय इसके कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल गजलों में अच्छा नहीं मानते। आधुनिक गजल अपने ये कहना चाहिए कि जो पारंपरिक ढांचा है उससे बहुत आगे निकल गई है और वो अपने समय और समाज की बात कर रही है
1: जी।
0: आप किस तरह से अपने शेरों में अपने समय और समाज की बातों को पिरोते हैं?
1: देखिए, मैं तो जहां पे रहता हूं और मेरे जो एहसासात हैं वहीं से निकल के आते हैं, चाहे वो मेरा दफ्तर हो चाहे वो लोग हों जिनको मैं सर्व करता हूं। तो जैसे मैंने एक शेर कहा कि तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
0: वाह, कितनी प्यारी लाइन है।
1: तुम काम से आए हो तो फिर काम बताओ।
0: हाँ।
1: बेकार खुशामद में ना यूं वक्त गंवाओ।
0: वाह, ये तो सीधी सीधी बात हो गई है।
1: ये सीधी सीधी बात हो
0: ये मतलब है। आपने अपने दफ्तर के लिए कहा है।
1: जी, जी, जी। ऐसे ही मेरी गजल है, मैं चाहूंगा कि दो चार शेर आपको पेश करूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहां से
0: जी
1: अपने विषय उठाता हूं।
0: जी इरशाद।
1: तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं
0: जी,
1: उनके लिए कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में
0: मशहूर
1: कहा हुआ था जी। तो मैंने कहा कि सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
0: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले,
1: छह दिन में भी 72 निकले।
0: ओ, उल्टी बात कही है।
1: उल्टी बात है
0: जी।
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, जिनको हम सूप समझ रहे हैं
0: जी,
1: सूप छलनी से भी बढ़कर निकले, छह दिन में भी 72 निकले। दफ्तरों में ना मिला एक इंसान।
0: वाह,
1: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले।
0: क्या शानदार है, क्या खूबसूरत। वाह,
1: दफ्तरों में ना मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है,
0: क्षितिज ओझल है,
1: धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो सिलसिला है जहां आप अपने समय और समाज को अपने अशार में पिरोते हुए चलते हैं। पहली किताब से कुछ चीजें हमें सुनाइए प्लीज।
1: जरूर, एक गजल के शेर सुनिए कि अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं।
0: क्या बात है, वाह।
1: अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं।
0: वाह,
1: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं।
0: वाह,
1: थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं।
0: वाह,
1: तुम की पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो। तुम के पंछी हो उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो, कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं।
0: बढ़िया है।
1: आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का। आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं।
0: वाह,
1: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे,
0: औजार देखे,
1: जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं।
0: सुंदर, बहुत बढ़िया।
1: और है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरह लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पहली किताब से आपने एक गजल पढ़ी है।
1: जी, जी। एक गजल है जो तत्सम शब्दावली के साथ में हिंदी की।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूं उसको भी पेश करूं आपके सामने। पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं,
0: वेदना का व्याकरण,
1: पढ़ रहा हूं वेदना का व्याकरण मैं, हूं समर में आज भी ये रे क्षण में।
0: वाह,
1: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो
0: जी,
1: सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटे आवरण में।
0: क्या बात है।
1: रच रहा हूं आज मैं कोई

0: गजल फिर रच रहा हूँ आज मैं कोई गजल फिर, खोल बाहें कर रहा हूँ दुख ग्रहण में।
1: वाह,
0: ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, ये निरंतर रच जगे चिंतन ये लेखन, कर रहा हूँ अपनी ही वै का शरण में।
1: वाह,
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी
1: जी,
0: पीछे पीछे अनगिनत हिंसक शिकारी, प्राण लेकर भागता सहमा हिरण में।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: शक्ति का हूँ पुंज एटम बम सरीखा,
1: एटम बम,
0: शक्ति का हूँ पुंज एटम बम सरीखा, देखने में लग रहा हूँ एक कण में।
1: वाह बहुत अच्छा है।
0: है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, है मेरी पहचान है अस्तित्व मेरा, कर नहीं सकता किसी का परिक्रमण में।
1: क्या बात है,
0: ब्रह्म का वरदान हूँ नूरे खुदा हूँ, ब्रह्म का वरदान हूँ नूरे खुदा हूँ, व्योम का हूँ तत्व धरती का लवण में।
1: वाह वाह, इसमें पूरी साइंस वाइंस आ गई है।
0: इसमें तीन धर्मों के बारे में आ गया। देखिए
1: दर्शन तो आया
0: जी,
1: पर मैंने साइंस भी देखी कि हाँ प्रॉपरली साइंस आई है इस गजल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म का वरदान हूँ नूरे खुदा हूँ, व्योम का हूँ तत्व धरती का लवण में। और एक दो गजल के शेर कुछ और पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने, के बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या
1: जी,
0: बिन बात अगर रूठ हो जाए तो करूं क्या, और वजह भी कोई ना बताए तो करूं क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, सब देखने वालों की निगाहों में जलन है, वो मुझसे जो नजरें ना हटाएं तो करूं क्या? क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, क्यों गैरों के आगे मैं कभी हाथ पसारूं, और यार भी एहसान जताएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, वाह।
0: होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, होगा यही बढ़ जाएगी एक और शिकायत, वादा भी करें और ना आए तो करूं क्या।
1: वाह,
0: मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, मुस्कान पे मैं जिनकी हूं आलोक फिदा वो, हर बात मेरी हंस के उड़ाएं तो करूं क्या।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि से है, ये संगठन कितना मायने रखता है और आज आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की भविष्य की चिंता करता है, उनके पीएफ के माध्यम से, उनकी पेंशन के माध्यम से, और एक ईडीएलआई नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से। इस समय 7 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं जो लाइव जो सब्सक्राइबर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आता है।
1: जी जी, बहुत बड़ी तादाद है,
0: बहुत बड़ी तादाद है, और इनकी पेंशन और इनके पीएफ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक खासतौर से मैं अपनी सर्विस के बारे में कहूंगा कि हमको दोनों मौके फराहम होते हैं कि हम स्टेट की जो पावर है वो भी रखते हैं और साथ में एक रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, साथ में हम जो है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम करोड़ों जो कर्मचारी हैं जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं
1: उनकी बेहतरी,
0: उनकी सेवा कर रहे हैं।
1: जी, एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अपने काम के बीच में लिखने का वक्त कैसे निकलता है?
0: देखिए, इसीलिए शायद मैंने इस शायरी को चुना
1: जी,
0: क्योंकि शायरी ये मुझे ये सुविधा देती है, ये सहूलत देती है कि मैं एक शेर कभी भी कह सकता हूं और उसको नोट कर सकता हूं या दिमाग में रख सकता हूं। दिमाग से तो निकल जाता है तो अक्सर वो
1: लिखना ही पड़ता
0: स्लिप
1: है।
0: में स्लिप में लिख लिया, जो दिमाग में रहता है वो अक्सर निकल जाता है। तो कई बार होता है काम करते करते भी कुछ ऐसे एहसास आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनसे एक शेर का जन्म होता है, वो शेर उस समय लिख लिया जाता है, उसके बाद जब कभी मौका आता है तो उसमें आगे के शेर कहे जाते हैं।
1: क्या बढ़िया बात है, अपनी किताबों के बारे में बताइए।
0: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उसी के नाम मेरा पहला संग्रह था जो 2016 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आया था।
1: जी जी,
0: उसके बाद 2022 में कलम जिंदा रहेगा मेरा संग्रह था दूसरा
1: जी,
0: जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। जो पहला संग्रह था उसी के नाम, वो उर्दू में भी आया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी आया नश्तालिक में, उसे अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया था। और तीसरा संग्रह जो है वो लफ्ज चारागरी भी करते हैं के नाम से, इनफैक्ट ये संग्रह मैंने नहीं किया था बल्कि बहुत मशहूर लेखक शायर हैं कवि हैं ओम निश्चल जी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छे लेखक आलोचक हैं। उन्होंने एक सीरीज निकाली है सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली से, उसमें दौरे हाजिर के जितने भी अच्छे शायर हैं ان سب پہ ایک ایک کتاب نکالی.

0: उन्होंने, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे भी इस सीरीज में
1: इस सिलसिले में उन्होंने चुना आपको
0: जी।
1: तो इसमें से कुछ सुनाइए प्लीज।
0: हाँ, लफ्ज चारागरी भी करते हैं, ये इस जो संग्रह है उसका टाइटल है। मैं आपको एक गजल सुनाता हूं कि मौसम के बदलाव दिखाऊं
1: जी,
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं।
1: वाह वाह।
0: मौसम के बदलाव दिखाऊं, तुम आओ तो घाव दिखाऊं, जहरीले लहजों में उलझे, जहरीले लहजों में उलझे, रिश्तों के उलझाव दिखाऊं।
1: वाह।
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं।
1: वाह।
0: बस्ती भर में सन्नाटा है, देखोगे तुम आओ दिखाऊं, घर का आंगन सिमट गया है, घर का आंगन सिमट गया है, रिश्तों का बिखराव दिखाऊं।
1: वाह वाह।
0: देखो तो बंजर बस्ती में, देखो तो बंजर बस्ती में, हिजरत का फैलाव दिखाऊं।
1: वाह वाह वाह।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं।
1: बढ़िया है, बहुत अच्छा।
0: आलोक अब आवाज ना आहट, किसको दिल के घाव दिखाऊं। ये गजल और है कि फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी
1: जी,
0: फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी, जब परिंदों के बिलगने की सदा आई थी।
1: वाह।
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं,
1: रूह पे भी छाले हैं,
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी।
1: वाह वाह वाह।
0: इस जबां पर ही नहीं, रूह पे भी छाले हैं, मैंने एक बार तेरी झूठी कसम खाई थी, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी।
1: वाह वाह।
0: बन के जंजीर मेरे पांव में वो रहती है, मैंने एक बार जो पायल तुझे पहनाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी।
1: क्या बात है, वाह।
0: उम्र भर सिर्फ वही रौनके तन्हाई थी, मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है
1: जी,
0: वो दबे पांव बराबर से गुजर जाता है, गो कि उससे मेरी बरसों की शनासाई
1: शनासाई थी। क्या बात है।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
1: आह प्यारी लाइन।
0: वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: वाह क्या बात है, कितने अच्छे अशआर आपने सुनाए। आलोक जी, इतनी सारी बातें हुई, आपकी पसंद के एक गाने की बारी है चलते चलते, तो बताइए कि इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: वाह, साहिर लुधियानवी फिल्म का नाम है। कभी कभी खयाम साहब का संगीत इस गाने में सुनते हैं।

0: आलोक जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपकी रचनात्मक यात्रा के बारे में हमने जाना और आपके अशार भी सुने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि आज मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ कि मैंने विविध भारती का स्टूडियो देखा, विविध भारती का ऑफिस देखा, जिस विविध भारती को मैं बचपन से सुनता आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और लेखक आलोक यादव से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: एसएच बिहारी का लिखा गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत।
1: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी, वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: कदील शिफाई की रचना आपने सुनी उत्तम सिंह जगदीश की तर्ज थी, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजें और पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे हे।
3: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
3: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
3: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
3: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम।

0: 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज फिल्म खिलौना, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अंजान की रचना आपने सुनी, चित्रगुप्त का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी बलम परदेसिया।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुहाग फिल्म का गीत आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओं संपन्न हुआ।
1: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिंदगी में कश्मकश या उलझनों का भी गजब समा होता है श्रोताओं। समझ नहीं आता कि जिंदगी में कश्मकश है या कश्मकश का ही ताना बाना है जिंदगी। कभी मोहब्बत, कभी किसी दो बातों को लेकर, दो चीजों को लेकर, या फिर कहीं घूमने जाने को लेकर, या फिर कभी शादी ब्याह को लेकर कश्मकश तो रहती ही है। एक सुलझाया तो दूसरी उलझ गई। ऐसे में करना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, चलो कहीं घूमने निकल लेते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज

रेडियो पर गीतों का आनंद लेते हैं। तो विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए श्रोताओं का भी। अपने फेसबुक पेज पर तो हमने आज की इबारत लिखी ही है, डाली ही है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा भी है। अपने और भी श्रोताओं के लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। जिंदगी में कश्मकश अक्सर दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझते हैं ये दिन ये रात, कुछ एहसान उन आंखों का। ये कश्मकश के खूबसूरत सिलसिले कभी गम की दवा, कभी रंग में बिखरते नूर की तरह नजर आते हैं, और सही गलत के दो राहे पर ला खड़ा करते हैं। शोख फूलों की मोहब्बत का एहसास तो कभी चंदन की खुशबू को छूने की चाहत भी मन में हलचल मचाती है और अक्सर उलझन में डाल देती है। ये उलझने रूप तो बदलती हैं थोड़ा तड़पाकर, लेकिन संघर्ष के कुछ न कुछ मायने तो सिखा जाती हैं। ये कश्मकश की रातें कट भी जाती हैं और जिंदगी में नई मंजिलें, नया सवेरा होता है। कश्मकश को लेकर आज आपको हमारी जो ये इबारत है वो पढ़नी भी है, और हमें कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजनी है। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम से। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आवाज आपको बतानी है श्रोताओं। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। संघर्ष फिल्म से वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये नगमा था। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीत किसका है और इस गीत में भी यही आपको बताना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी जिंदगी की कश्मकश हमें उलझाती जरूर है, मगर यही उलझने हमें अपने दिल की आवाज सुनना भी सिखाती हैं। कुछ चाहते अधूरी रह जाती हैं, कुछ आंखें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं और कुछ रास्ते तड़पा कर भी हमें नई मंजिल तक ले जाते हैं। शायद हर कश्मकश के पीछे कोई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा छुपा होता है। आज की इबारत भी जैसे दिल से यही कह रही है, उलझ रहिए नहीं, बस चलते रहिए, रास्ते खुद अपनी मंजिल बता देंगे। एक और श्रोता लिखते हैं, दिलों की राहें भी अनोखी इम्तहान लेती हैं, कभी मृदुल सफलता तो कभी कसहली कड़वाहट से भरी कश्मकश भंवर में उलझ इंसान स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है और स्वयं को ढूंढता है। नूर के लिए तरसती निगाहों में उसे मंजिल भी एक मरीचिका सी प्रतीत होती है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज जो शब्द हैं कश्मकश, मोहब्बत, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, रात, इन शब्दों पर आधारित गीत सुनने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की कश्मकश दिल की राहों से होकर गुजरती है, कभी चाहतों में उलझती है, ये दिन ये रात कुछ एहसास दिला जाते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, अक्सर मेरा मन कहता है, अक्सर कोई लड़का इस हाल में एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। यानी कश्मकश को लेकर जो भी कुछ गीत इनके जहन में आए हैं वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की इस खूबसूरत कश्मकश दिल की राहों, चाहतों और सही गलत के दो राहों को बयां करता एक बेहद गहरा फिल्मी गीत जो है वो इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है कि जिंदगी की ये उलझने और जज्बात ही इंसान को भीतर से मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। जीवन के अनकहे एहसास, दिल की कश्मकश, दिल हमेशा किसी न किसी में उलझ कर सही राह तलाशता है। कभी कभी आंखें खामोश रहकर भी एहसान और दर्द बयां करती हैं। चाहतों, उम्मीदों और ख्वाहिशें ही इस सफर को खूबसूरत और जिंदा रखती हैं। आप अगर कलाकार भी बता दें तो क्या ही अच्छा है।

0: सुनील दत्त और वैजयंती माला पर फिल्माया गया आम्रपाली फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत में तर्ज थी शंकर जयकिशन की, और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था तर्ज थी नौशाद की। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक दिया है। एक श्रोता लिखती है कि जीवन में जब दुविधा, मानसिक तनाव या खींचातानी होती है तब समझ में नहीं आता क्या करें। उलझन को सुलझाने में भले ही देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर सदा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, इस गीत को इन्होंने पसंद किया है। और कश्मकश को लेकर या कश्मकश के बाद जो मंजिलें मिलती हैं उसके उजालों को लेकर बहुत सारे गीत हमारे श्रोताओं ने भी सुझाए हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो बताइए श्रोताओं कि जब किसी अजनबी से पहली बार बात होती है तो बड़ी कश्मकश होती है, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि कभी आपको किसी से बात करने में कोई कश्मकश हुई, कोई उलझन हुई, लेकिन वो बातें इतनी प्यारी थी कि वो भी इतनी याद आई कि वो भी एक कश्मकश का कारण बन गई। और एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि दोस्ती और प्यार, इन दोनों के बीच अक्सर कश्मकश चलती है, किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे। एक श्रोता लिखती है कि नई मंजिल पाने के लिए कश्मकश भरी जिंदगी में कई राहों को पार करना पड़ता है। दो प्रेमियों का मिलन वो खूबसूरत पल मन में उलझन में भी डाल देता है मन को, पर उस मीठे एहसास को पाने के लिए मन में हलचल मचा देती है और आत्मविश्वास जाग उठता है। एक न एक दिन नई मंजिल मिलेगी, नया सवेरा होगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत, कश्मकश, उलझन, जिंदगी, संघर्ष, नूर, रंग, आंखें, आंसू, ये सारे शब्द हैं तो इनसे गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जो भी कश्मकश होती है वो सीधे तौर पर दिल की राहों से ही होकर गुजरती है। चाहत या तृष्णा ही इस कश्मकश का मूल कारण है। दिन रात इन्हीं चाहतों में उलझे रहना माया का प्रभाव माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उलझन दुख का कारण नहीं होती। कुछ उलझनों को सुलझाने में जिंदगी बहुत गहरे सबक सिखाया करती है। और भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। दो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उनके जवाब फटाफट आप भेज दें श्रोताओं।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार

आप सुन रहे थे ये गीत आराधना, फिल्म का कलाकार आपको बताने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी केवल सीधी लकीर नहीं बल्कि ये चाहतों, एहसासों और कश्मकश से भरे दिन और रातों का ये खूबसूरत ताना बना है। ये कश्मकश इंसान को अक्सर सही और गलत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां मन में कई तरह की हलचलें और सवाल उठते हैं। जीवन की ये उलझने और तड़प व्यर्थ नहीं जाती, ये हमें संघर्ष के असली मायने सिखाकर हमारे व्यक्तित्व को तराशती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की यही कश्मकश ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां दिल की राहों पर चलते हुए चाहतें, यादें और फर्ज आपस में टकराते हैं, जो कभी तड़पाते हैं तो कभी चंदन की खुशबू की तरह छूकर गुजर जाते हैं। ये कश्मकश हमें कभी कभी सही और गलत के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है, जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता। ये उलझने हमें तड़पाती जरूर हैं, पर यही तड़प हमें मोहब्बत का मर्म और गम को दवा बनाना सिखाती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब हम दिल की राहों पर कदम बढ़ाते हैं तो उम्मीदों का एक नया आसमां खुलता है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, प्यार, सुकून, सफलता और रिश्ते, लेकिन जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती है। वो हमें उन मोड़ पर लाखड़ा करती है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। यही वो बिंदु है जहां से कश्मकश की शुरुआत होती है। तो ये तो बताइए कि जब आप ऐसे उलझनों में होते हैं तो अपनी बातें किसी को कहते हैं या फिर खुद से ही फैसला लेना ठीक समझते हैं? आपको गीतकार बताने हैं श्रोताओं।

ये गीत आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का मुकेश की आवाज में। कमर जलाल आबादी के बोल थे, आपको संगीतकार बताने हैं और कलाकार बताने हैं। श्रोताओ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी एक झूले की तरह होती है, जैसे झूला जितना जल्दी पीछे जाता है ठीक उतना ही आगे आता है। ठीक इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात के भी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने से कभी पूरी हो जाएगी, कब पूरी हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी होती है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि जीवन की इस उतार चढ़ाव में जीवन के इस उतार चढ़ाव में न जाने कितनी उलझने आती हैं और जाती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। कभी कभी उलझे हुए रिश्ते हम चाह कर भी नहीं सुलझा सकते, एक डोर सुलझाते हैं तो दूसरा कहीं और उलझ जाता है, और कैसे सुलझाऊं मैं इस उलझन को, बताए कोई राहें धुंधली सी। तो कुछ इन्होंने अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो कश्मकश के हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? इस गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ, और इसके पहले जो गीत आपने सुना उसमें भी कलाकार आपको बताने हैं।

नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रात और दिन फिल्म से। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा कश्मकश का समा अपने होने वाली साथी और उसके परिवार से बात करने में होती है। बहुत सारी फीमेल श्रोता मेरी बात से सहमत होंगी, ऐसा इनका लिखना है। शायद किसी नए व्यक्ति के बारे में ये लिख रही हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सच्चा प्यार ही दोस्ती का आधार है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत हो सकते हैं राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, चंदन सावधान गीत तो बहुत ही खूबसूरत गीत है श्रोताओं। लेकिन आपने जो बाकी के दो पहलू दो बातें लिखी हैं राही मनवा यानी गीत के विषय में, दुख की चिंता क्यों सताती है या रात भर का मेहमा अंधेरा, तो ये तो कश्मकश के एक पहलू हो गए। कश्मकश के बहुत सारे पहलू हैं श्रोताओं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि जिंदगी कश्मकश है या कश्मकश ही जिंदगी है, कैसे कहा जा सकता है क्योंकि कश्मकश तो हर पल साथ रहती है। एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है जब ऐसी कश्मकश होती है, तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की सुननी चाहिए? कलाकार बताएं और संगीतकार।

राजकुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आपने सुना और ये तर्ज थी रवि की, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मकश कभी भी हुई तो सोच समझ कर उस समय जो सही लगा वो किया, पर कुछ निर्णय बाद में गलत भी सिद्ध हुए। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी की आवाज में ये गीत जो हमने पहले आपको सुनवाया था इन्हें बहुत पसंद है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि जिंदगी आप के चाहे अनुसार ही चल सकती है क्या, भविष्य के झरोखों में क्या है इसका सिर्फ पूर्वानुमान ही किया जा सकता है, उसी के अनुसार कश्मकश के समय निर्णय लिया जा सकता है, आने वाला समय ही बताता है कि ये निर्णय सही था या गलत। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपकार का गीत था, भारत कुमार यानी मनोज कुमार पर फिल्म आया गया। जी हाँ, आशा पारेख भी नजर आती हैं। तो आपसे हमने पूछा था दिल और दिमाग दोनों में से आप किसकी सुनते हैं या किसकी सुनना चाहेंगे। और एक सवाल और आपसे पूछते हैं श्रोता कि क्या जब हम कॉलेज में थे तो उन विषयों को लेकर कोई कश्मकश आपके जहन में था? इस गीत को पहचानिए, फिल्म का नाम बताइए।

कॉलेज की जब शुरुआत होती है श्रोताओं, तो विषयों को चुनने में बड़ी कश्मकश होती है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर लिखें। मौसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती और प्रेम में एक चुनना हो तो दोस्ती ही चुनेंगे, दोस्ती की तो बात ही अलग है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद कॉलेज का पहला दिन था, किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। तब काफी देर तक क्लासरूम के बाहर हम और एक अन्य लड़की टहल रहे थे। थोड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए हमने पूछा न्यू एडमिशन, तो उसने भी हाँ करके सर हिलाया, फिर बातचीत शुरू हुई। वही लड़की आज तक अच्छी सहेली है। जी हाँ, अच्छे साथी तो बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपका भी कोई कॉलेज में अच्छा साथी बना जिसे आप शुरू में बातें करने से बहुत हिचकिचाते थे? ये फिल्म आपको बतानी है।

एक सवाल का जवाब बड़ी ही शिद्दत से दीजिए श्रोताओं, कि क्या आपके मन में इस समय क्या कश्मकश चल रही है।

अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के रंग कई रे साथ ही रे, जिंदगी दिलों को जोड़ती भी है, जिंदगी दिलों को तोड़ती भी है। जब जिंदगी की उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, तब दिल कहता है जाऊं कहां बताए दिल। एक पैरडी जैसे इन्होंने बनाई है श्रोता, और हम इनकी सराहना करते हैं, अच्छा लिखा है इन्होंने। और हमारे जितने भी श्रोता हैं, कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उन सभी का बहुत बहुत तो शुक्रिया हम कहते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि जो विषय होते हैं उनको लेकर आपकी कितनी कश्मकश थी कॉलेज में, और इस समय आपके दिल में क्या कश्मकश चल रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जब उलझने होती हैं, ऐसी कश्मकश जब होती है, तो क्या कभी रेडियो विविध भारती आपका साथी बना? कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म बतानी है।

अमानुष फिल्म का ये गीत था प्रेमा नारायण और उत्तम कुमार पर फिल्माया गया। श्रोता, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जिंदगी के उतार चढ़ाव, कश्मकश और उलझनों को, उनके भाव को आज के गद्यांश ने समेटा हुआ है। अजीब है जिंदगी का ये नूर और रंग, कभी आंखों में अश्क, कभी चाहतों की उमंग, चंदन की चाहत हो या फूलों का एहसास, जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तहान लेती है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर ये कार्यक्रम जो है, जब हम सुनते हैं या फिर जब हम विविध भारती सुनते हैं, तो ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है। संगीत जगत में हमारे रग रग में खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। आकाशवाणी।

एक श्रोता लिखती हैं कि दिल से यानी भावना और अंतःप्रेरणा से और दिमाग यानी तर्क और बुद्धिमता से सोचना जीवन के हर बड़े फैसले में दिल और दिमाग का तालमेल ही सही होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
2: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंति सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: आमात्य योगेंद्रायण, कैसा वन है ये? हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी, चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्य वासव दत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र? सोच कर कांप उठती हूं। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन, उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं। सिहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया। आप ना होते तो क्या होता मेरा? और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता। मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाती योगेंद्रायण।
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा? जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस वेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
0: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है। मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
1: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका हैं।
0: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
1: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
0: हाँ?
1: मुझे लगता है वहां तपोवन है, क्यों न हम वहां चलें?
0: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार छोड़ दें, आर्य हट जाए, मार छोड़ दें।
1: आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है? पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार छोड़ें, ए आर्या, हट जाएं, मार छोड़ दें।
0: आर्य योगेंद्रायण, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
2: हैं? ए आर्या, मार छोड़ दें।
0: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
1: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के

0: घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
1: मार छोड़ दे आरी, हट जाए, मार छोड़ दे।
2: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
3: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
4: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
0: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासुदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
3: जी,
0: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
3: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
0: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व साक्षात्कृत हो रहा है।
5: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
6: स्वागत है राजकुमारी।
7: स्वागत है राजकुमारी।
6: आइए तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
7: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
6: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य।
8: बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
9: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
7: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
9: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है।
8: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
6: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
3: राजकुमारी की जो इच्छा।
10: आश्रम के तापस जन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
0: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
6: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
7: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
3: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
0: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में हैं। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
6: फिर क्या चाहते हैं आप?
0: आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।
3: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है। धन, प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन धाती की रक्षा?
6: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहे वही संपन्न हो।
3: जो आ गया राजकुमारी जी।
0: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती। जाओ अवंतिके, देवी के समीप जाओ।
8: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका।
6: चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
9: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
6: आओ अवंतिके, हमारे साथ चलो।

0: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीतकर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
1: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं, कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे ये सामने शायद तपोवन है। हाँ तपोवन ही है, निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम, निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
2: ब्रह्मचारिण पधारें। आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान। लीजिए शीतल जल ग्रहण करें।
1: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
2: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
3: प्रणाम।
1: आयुष्मान भव।
2: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
3: प्रणाम।
2: और ये इनके भाई।
4: प्रणाम मुनिवर।
2: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
3: प्रणाम मुनिवर।
1: आयुष्मान भव।
4: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
1: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं, वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
3: लावणक ग्राम में।
4: अध्ययन समाप्त हुआ?
1: नहीं तपस्विन, नहीं।
4: नहीं, फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
1: वहां एक दुखद घटना घटी।
4: वो क्या?
1: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
3: स्वामी।
1: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
3: मेरे स्वामी।
1: जब राजा अन्यत्र आखेट खेलने गए, तब गांव में आग लगी। और वासवदत्ता उसमें जल गई।
3: वासवदत्ता जल गई।
1: और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
3: क्या?
4: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
1: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत हुए। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
3: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूँ, उसी के बल आज जीवित हूँ, आज भी उनके प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: ना रो ना रो अवंती के। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारी फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और हाँ वासवदत्त
4: हाँ अवंती राजपुत्र हाँ प्रिय
0: हाँ शिष्य
4: वासवदत्ता

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्नवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्नवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई? क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
5: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चींटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
5: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
5: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
1: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
6: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर पधारे राजकुमारी।
7: सांध्य बेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
6: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
5: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: पद्मावती, ये रही तुम्हारी गेंद।
1: अवंती के, अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: खेले राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे। क्या कह रही है चिट्ठी?
1: सुन रही हूँ अवंती के, पर बताओ हमारे यहाँ के राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर हैं और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती? उज्जैनी के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
0: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य चेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हो देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों।
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
0: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
1: अवंती की, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
2: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपकी मंगनी हो गई।
0: मंगनी हो गई?
2: बधाई हो राजकुमारी।
0: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
2: वत्सराज उदयन के साथ।
0: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
2: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
0: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
2: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य, ज्ञान, वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
0: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष हैं। हाँ, मेरा मन भी यही कहता है।
1: ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमद वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र वे भी अब पराये हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देख भर लेने के मनोरथ से ही
1: आर्य अवंतिका जाने कहां।

0: लता के नीचे शिला पट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
1: किस लिए चेटी?
0: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए लीजिए फूलों की टोकनी।
1: हाय, मुझे ये करना होगा। भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
0: अरे क्या सोच रही हैं? जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
1: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
0: ऐसे हैं, ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
1: कहना, क्या सुंदर हैं?
0: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
1: अच्छा अब बस भी करो।
0: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
1: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
0: अच्छा अच्छा शीघ्र माला गूंथते,
1: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ, इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
1: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
1: नहीं नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
1: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्ये, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं।
5: हाँ हाँ लो ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
1: ये भी कैसा दुर्भाग्य, आर्यपुत्र भी अब मेरे देर है।

0: स्वप्न वासव दत्ता, अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने।

0: la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.